मना छंद तो प्रसाद करुण आलिया है अर कहलिया है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित

सतगुरु के नाना पायो बे सतगुरु के नाना पाया सतगुरु चाप रखे नगर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मिले सदामगत।

पौड़ी शिव कित संतों की जन सच्चो सच त्याया उन्हें मंदे पैर न रखे कर शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़ा बनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अकलन ने देवा चढ़ा सवाया वड्डाई वड्डा पाया वड्डाई वड्डा।